नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। अरे जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री जी की।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया।

0: महाराज को नया पकवान पसंद आया। मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बुल्लू मुन्नू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वाद

0: कुछ सब्जियाँ और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, हरा धनिया, मिर्च, बड़ा मजा आ रहा है। भेलपुरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपुरी, अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपुरी।
1: कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपुरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गा।

0: गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। यो, खेलोगे ना तुम मेरे साथ?
1: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
0: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम?
1: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊँ?
0: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
1: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
0: अच्छा अच्छा बताओ, क्या है जवाब?
1: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
0: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
1: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
0: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
2: अब्दुल रहमान।
0: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
0: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
0: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
0: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
0: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
0: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मीबाई।
0: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
0: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
0: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
0: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
0: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ, तेल डालूँ 2 चम्मच,

0: फ्राई करी लाल हो गए, इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर एक चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके बाय
2: बाय।
3: मजा आया ना तो?

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़ भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है।

0: है तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक पालक है तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज़्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर पनीर से पालक पनीर ही बनती है ना तो वो वैसा ही बना सकते हैं तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
0: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए क्योंकि उनको आहार मिले,
1: जी
0: पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

भुलिया बदल गई जितना से आई घर की भुलिया बदल गई लड़का और बिटियन का ऐसी अकल।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बेवारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है

0: उन्हें उस जगह को घुमा दीबे। एक कथे है ना कि अपन सुन के भी, सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए, और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चलत हैंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो, उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करत हैंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी, काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर करवे चलत हैंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

बैतबाउर मिलकेन धसान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान, तो जितनी गर्दी उतनी बरसात।

0: पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी।
2: श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के

0: दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की। फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है। वाणी से प्रमाणित नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है। अच्छा, माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अगनासे हूँ तबहि। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ, जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है।

0: कितने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं। और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी आते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी चेटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पोताई स्वयं करते हैं, रख रखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपका शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें तय के हो?
2: यही के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फलपूर रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो खंगारों का है। और वो जो है किराए पे ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा,
2: उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन यह है की बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सो सुनते हैं एक और लोक गीत धनकुआ की आवाज में।
4: देख

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारी इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी को लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवत राजन की कुमार और एक हती बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए।
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती। उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का, तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन खो चले जा गए।
2: दो ही के दो
1: शिकार भी अपने घूरो मस्के भी अपने घूरो मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बर्ती तुमने फिर कर गया।
2: अच्छा,
1: कल के दिन में भी बोले बोले कल ले बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देख। अब राजन को तो बस बीरन हती अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा,
1: दोनों जने राजा हो बस बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कल कबैया कहाँ की जानी छटे कल ससुरारे जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घेगो से नाव खो रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे।
2: जा सही के
1: नाव को सब पतो है। नाव को तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: सो बस अब बीरन के बार बन गए। अब राजन के बादशाह के बनने। सो बादशाह के बार बने। सो बादशाह बोले बोले कर ले काय सुताई का बोले कर ले कही राजन के राजा बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है। हमारा हम कैसे चले जावे। अरे बोली कर ले राजन के राजा, आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं है।
2: अच्छा,
1: तो बस बोली कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा,
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए। अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चले ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीरन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा,
1: गली में से बटी हटी उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी। बीरन गौ पानी पीवे के लाने तो बने बीजक बाँचो।
2: अच्छा,
1: बीजक बाँचो बामे सू में गलियां अलग अलग। बीरन हो बदमाश। बीरन बदमाश हो।
2: अच्छा,
1: तो बीरन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावली में और वह बीजक को भरा दो
2: ले उसका। तो
1: अगर हमारे आ गए जब बीजक कुंजो राजा पानी पीवे आ रहा तो जब बाँचे ले संग छूट गो। इसे क्या हमारे ससुराल चलेंगे
2: तीनों जने।

0: जा को बीरन बदमाशी के रहुआ सुबह सब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी सुबह में बीजक में गिराव लगो तो राजा ने अपने खोबन की उली सुली धुदाओ और फिर उगे बाचो बाचो भाई सुबह ने उन्हें प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जा बीरन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने बोले कह ये राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल्ले पुरखन को बीजक के ने बता दिया है हट कर ले के हम अपनी ससुराल जाते अपने ससुराल तो बोले कल्ले उनकी शर्तें लग गई बोले कल्ले जो पहले आज विदा करा के वो जो बाउरी पे ठहरे क्या दिन कितने को बीत जाए अपनी ससुराल चली गए और भी अपनी ससुराल कर ले और जी सताई का ना बोले कल जी राजन के संगे चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं कल जी तो राजन की कुमार और सताई का दो जने जा रहे भी अपनी ससुराल चले गए और सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास बोले कल्ले सुताया कब बोले कल्ले ये राजन के राजा कल्ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कल राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माय पानी अपन वन में हैंगे बोले कल्ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना आपका बोले कल्ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी ऊपर देख के भी लम्बे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती पानी जल्दी हो गया बोली कल चल चल ले जा सुबह लोटा गड़ी ले के चल अरे खुली जाए सुबह जन में दे पाई खुली से जीत गए कि हां फिर बाहर आराम से बिन नगर चले गए सो उतर काकस्ता हाथों के जानवर लड़की राजन को बियाई थी वो नदिया में स्नान कर रही
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही थी सो सुताई अक्का ने कहा करो के झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए बोले कल सताई का क्या बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम ले आए बोले कल महाराज जाके ना पूछो पानी पी लो तुम तो बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया हो ऐसा जल्दी हो थे को कि मचो सचो भर के आ बोले कल महाराज कल वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही एक तो उसके साथ हमारे मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मर जा रहे अरे बोले कल बगरा भी सुबह पानी बगरा के तो तालाब पे पहुंच गए तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाने वो कल सुधायक का बोले कल कहिए राजन के राजा बोले कल इसको लड़की को पूछने तो जरूरी है जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को बोले कल कहो उन्हें कही

0: नवकक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
2: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा उनने फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: सताई आपका बोले कल राजन की राजा। सुनो हमारी बात अभी से बोल देना।
1: सही है,
0: अभी से बोल देना। बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ।
0: हैं?
1: सही कही।
0: बोले कल नहीं, अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो।
1: हाँ
0: भूले वो सब।

0: गलिया लेखो बाता दियो रे सो लगे काहू के अरे द्वार दी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे लगे
1: अब पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दिए अब जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल्दी के जाए इनको बदन शरीर है कैसे मुंह करने मायक है तो पूछते रहे इंतायक है कई के अब जाइए से बताया सुनी कर बालो माँ से बोल।

0: जवाब मिल जाओ।
1: अच्छा
0: बाने मिली ना बताई ना बाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भीतर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही ली।
1: हाँ।
0: गली पूछ के उनने घोरो बढ़ाओ तो गांव की लाने तैयार हो। अब बाने सोची कि जो मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्ली सफरों और सफर पूर के और बाप ने जेल चली जो ने ये हती से जात भवन द्वार सतजा को देखो तो ससुराल सुबने द्वार उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुबी घरवाओं को बंद। अब भाभी से बोली भी

0: बिल्कुल क्या अब तुम
1: भाभी ने कहा ऊंचे कनेरा नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दे के लाने तैयारी के तैयारी करी अब इन दो ने कही चला
0: अच्छा
1: बोले कल देखो अपन को कग्गा गेल कुमार बनाए थी
0: हाँ बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसके यहाँ और वाला
0: सही
1: है जी
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अभी नहीं खुलो हमें तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की वैसा वाची सोने गंजन की भोजन बने
0: भोजन
1: बना के और अज्ञा दे दी भोजन के लाने तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बने थना जवाब
0: अच्छा
1: ठोकनी ठोकने ना तो भेज कैसे खोलेगा।

0: में टाठी सरका के माय कच्ची अब भूख खुल गओ के जई है हां
1: सही कह रहे
0: जब बात
1: आई के होते
0: जई है तो जई जब बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने माय टाठी माठी सरका के ओ बस सुता जा काने पे झटपट जो कछु राजन के की जो बाप बांधी
2: हां
0: ओ बाप नी बांधी ओ बस टाठी माठी जो कने कमे लोग बाकी कर ले काहे काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज मैंने अपनी टाठी धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आया
1: जैसे टाइम लगे जैसे
0: टाइम लगे बोले कल सुन ले कल सुत्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जाने सुबह सुबह तैयार हो गए जहाँ से तरा उनको उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कसरा सुबह ऊपर को पले चवन पीटने कसता
1: अच्छा
0: वो पले चा पीटने के तन दिन तो गई आगे बन आ
1: आओ आओ ये मैं भी दे रहे
0: ये भी दे रहे जरा क्योंकि कसे
1: हां
0: सभी लोग आओ जाओ
1: हां
0: तो बस जो राजन का हां साहब कल भी हो गए तो राजा का कल तो क्या है जो ऊपर का पले चा नीचे कस दिया हां अच्छा कस तो ने भज्जा छोड़ चार कंजों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे बस निकल के भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा दो रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे

0: देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ मैं
2: तो बस भी रुकते
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: ने पड़ोस की ने कही जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर वेर को संग है
1: सही है
0: दूर भर ये जाओ
1: तो
0: उनने हटी सो जैसे कछु पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए
1: फिर कमाई खोन पाड़िया ले गए
0: मई खो वही जहाँ उनकी रानास हटी फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन है तो ये भूखी अब रात को है समझ लिया ना हो तो हम भोजन में ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा थाली जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मोर भूल गई बन गई और असम दो हाथ दे रही संत।

अरे भोरे जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोला नहीं से, लेकिन बाने खरीदो हाँ जाकर।

0: कहे जी उन्हें शंख बजे से साधु जगे बम घले रहे झूल अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे
1: सही है का हो
0: का हो
1: कत्ते दुनिया भगत जाए मेरे विश्व ना कर जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पता होगा कि रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दोहा कह रही है ये सीता।

0: से लड़ की भाली रे सो मेरी पे ब्याह जी। अरे ऐसी सासों का काम की अति तेरी कुखन बांजाई हो जाती। ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती
1: तो बोला
0: ये तो कर गया है ना यार। सुबह पटक थार जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मेरे भी रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सजीव हो सोने घोरो मस्को चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो भोजन करके हम आपकी विदा कर खाना खाओ खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कई गई में खाना पीना सब और महीना भर के जाने रखता खाते घर चले गई। बस आओ अभी हतीशो अब पीने हकावे बारे हतीशो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्के छोड़ के अब खुद उनमें हकाई अब सुताई अब काल है कबाज जी ने हकाई सुबह हका के हो वह सब कहीं ऐसी और चली होंगे तो शाम हो गई से एक बमूरा को पुलो रहे से उतरे बस गए शाम हो गई से बस गए बस के में अब वो निकल ले सुनो सुताई का वो निकल ले का कल ले ही पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सुताई अक्का से कही के सुताई अक्का ऑर्डर दौरान ही है के पति लगाओ तो सुताई अक्का गए से तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को तो वे ये तीन पात में कहाँ खुल जाओ बोले कल एक आप को एक हम को एक रानी को अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमाए सुरानी की फार के मार पातस लगती आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का करें जिस सुबह घोड़े की पछाई की जो ये रहती ये भजत बडोर बनी थी तो बस छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडोर को ये भगे तो जब ये टूटे समय यहाँ का हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू किया ले सुबह सुनने के सुबह घोरो भंसाई रात भर को बड़ा सुबह तनो वो तनी बार दूर कहीं दूर सो नीक चावा पट्टो को घोरी में सुबह दूर पड़ी सुनने कई बार रानी मैं

0: ओ बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाओ थी बकुल इसको हकाओ थे रानी तो हका जो वैद्या से कचुवती तो राजा गिलंद की बाग में जी जा रहा सो वन्य भज्या घर वन्य नाय के तूपी माय की बोलन्या तूपी दिया थी जो रानी वो तो मालिन है जी जो मालिन गोली गोली कर लेगा ये कौन कहाँ की पाप नारी कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन खुद दे बहु में भीतर कार में बाग में बीरा दे जाए अभी तो राजा की बेटी थी उसे कछु मोरन को कछु टूटो है तो रही है की भी तो सुबह सुबह की तो अपने इंतजाम में अपने कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई सुई कछु बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान तो एक दिन अब उनकी बेटी है थी राजा की जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी जिनकी नाव तो बेटी को सो बिन दे फूलन की तुला तो लगती हुआ सो वह मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन खोल ले जावे सो राजन महती सोची के अब मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमी आए सो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रहे रहे सो राजन ने सोची कि ये तो काशी माशी की तो या है नहीं है, है तो को राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने घर पहुंची घर पहुंचे सो घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ तो उनने डाली उन्होंने लगाई अब बादशाह ने हती सो राजन की पियन नहीं होती बाबे नहीं होता कहूं कहूं अबे नहीं होता पियर को सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह का सो अपने उन्हें थाली लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह का सोबिन ने सोची अगर बिन तो हमारे खुलवा लिया उसे बन में ना छोड़ी उसे भाई ना करती हवा सोने हर सांस लगी तो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरकसा है राजन की बात में कोई खरकसा है नाव से पूछी जावा बोले क्यों खवास रखा बोले कल कहिए राजा कल कारण का है इको राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल ये रानी को बन में छोड़िया तो उनने अति से घोरो उनने सजो और बीजन ने सजो पहुंचे बोले कर ले चलो बताओ कि कौन छाड़ छोड़ी फिर जो रुख तरह छोड़ी थी वही रुख तरह ही गए दोनों जन नाव नहीं गए वे दो ही गए सो बोले कर ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धर ली सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद की बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतिया जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन में गए सो उड़ने भैया मालिन ने उन्हें घर आए बोले कल क्यों रे कहाँ के हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बाद वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले हाँ सुबह आराम से मालिन को साड़ी तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंग की ठीक है अब अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है सो को जो रूप काट को वो रूप काट उन ऊपर दिल ठाड़ी कर सो माल ने की जो ने बोल राजन बोली कल दो घोरे वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनने सब नाश कर दो बगीचा को सो उनने छड़ जा चलिए तुमको राजा बुला रहे हैं बोले कर ले जब तभी ऊंचे हटे बिल्कुल की और जहां से वे सज बज के फिर गए अपने अपने घोड़ी लेके बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कल तुमसे बात करे से तो मूर्ख काट दो और हमसे बात करे तो हम मूर्ख काट दो बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में एक ही बोले बैठो बोले बैठो अब उन्होंने हतो एक बीजक राजा गिलन ने कि अगर जो बीजक जी ने पहुंच गए हम लड़की की शादी उसी के साथ कर लेंगे। तो अब उन्होंने की सो दसला हो गए वह सका से काम लगाओ। अब वो रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलन ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कल नहीं ये राजा गिलन को बाकट ही चल जी और जो मकान गिले चल जी। सुबीर ने कही तो ठीक है सुबीर जो भैया जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जावे जावे से बाहर रानी जो बबीती अति से छाजी पे वो दातन कर रही थी तो बीजक लाइन थी बबीजक वो लोटा आके कर रखती दातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खून गई जो बादशाह ने बच गई बीजन मसले बादशाह ने बीजन ने बात बोली कर लड़की अरे बोली कर लड़की कहते हैं तसला पटकत पटकत वो तो सार पांच से की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कछु तुम ना तुम सानो हम ये डारा सुबह गए डारा सो आराम से गए डार भी के लाने तनक तसला में से गिला पहुंच वो इमेज दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलंत की लड़की खिलाड़ी है मजबूरी ये तो कोई राजा है सर बोलत कैसे है बोली कल महाराज तो नहीं है मंजूर संजू तो जो राजा पर बोली कल जा पर बोली पकड़ लिया बोली कल आ रहा चलो अब दुनिया में ले गई थी वो बीजक उनने वहां से उसे पूरो कर ये कब दो मिल रही दो मिल रही सुबह के सो लेकिन भाई उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तुम काट ले सुबह राजा का उस बात ना कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगिया एक दिन आते बोले मेरे को क्या के पहुंचे गए सो राजा ने कही बोले कल ले कवि साहब कहां के रहने वाले हो कैसे हो बोले कल ले के दी थी सुन फिर बार लड़की की शादी करी उन्होंने उनकी रानी ने हती बात हो गई।
1: देखो दोस्तों जा तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

एनर्जी थी, हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे, अभी सुनर वाले कैसे से चले गए, ये अपने भवन को चले गए। और रानी ने अच्छी से बात घर वाले।

तो जी काकेरे अपन खा जी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव तो सुनो जी काकेरे।

0: रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयान की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सम बताओ है, और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह हो दादा?
2: केना के पूरा पटक गया हम केना।
1: हम
2: इलाकी कमगा ऐसी नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे तरह
2: जी? हल्को हल्को काम कर अपने ढो बची देखे न।
1: और
2: वर्कर हम करा बस किए काम वाम हम कहते नगर।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के विचार जब तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आउती है अपन का का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिरार हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो हमें नहीं आया तो हम खा रहे हैं।
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ?
2: आओ बैठ जाओ जी आओ थे पूछा थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सब करा ठेंगे जनाब जी बैठे अब वैसे ही है मतलब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर निकल लेंगे तेना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कह सका
2: आप झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक ही है। अरे कछु नहीं है कछु नहीं तो 10-15 उसको तो खर्च किया आदमी को हाँ मान के चलो कछु ना कछु वो 10 उठा के चल जाते हैं।
1: दिन भाई आपको कैसे कटा
2: था? ढोल बच्ची उनता दिमाग लगा दे सिजारे सिजारे अपने छाने बैठे बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी?
2: हाँ
1: जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कत है आदमी का
2: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांच पाए हम मतलब और उसी हम दिखा कगदा नहीं बांच पाऊ मुझे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो? खावे पीवे की आपकी का इस्तेमाल है?
2: खावे पीवे को तकलीफ नहीं आ रहा मतलब जो घर में है तो खा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में वाबे की में का अंतर है?
2: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फैली अरे पापा जी जाना फैली के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे बाल बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जठानी न मिल गए दीवानी न मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो जी अभी के सब का
2: जब जो हो जी के शांति हो जी प्रेम हो जी सब में बड़ा प्रेम प्रेम रहे तो उसे कभी आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कभी आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदार वो काम प्रेम में ओवर का जो काम नहीं था प्रेम में मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पैसा टका खर्च ना हो जाए
2: हाँ घरे पैसा रहे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा वो काम नहीं।
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चट जी और कैसे रहे चट जी आपका कंचाऊ सब जनन से आपको काके वो है
2: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात बड़ी बात मतलब शुरू से आप बताओ
2: यात्रा ना कछु
1: यही बात है आप यही बात पूछन
2: चाहू
1: से बता दो आप के आप काके वो चाहते
2: जो अपने बाप मताई को माने भगवान को माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं के रूप है जो बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो पूरी जी मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
2: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे निकल तो जाकर आगे है जो मतलब है जब क्योंकि चले जाओ पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाता कहा जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहूँगा
2: जी उठ के आराम चाहू बस मिल जावे पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाए गए लेगा वाले अपने बाल बच्चे को सामान खाने दिए तीन चार सौ को महीना मिले दिए तो अपने उम्र खाद चलाते हैं।
1: ठीक है दादा, जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो देखो भैया, अब अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखबे चारों धाम करें। और भैया ये तो बातें अपनी अब हथी सो सब जन ने सुनी ही है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताए तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने। और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ, यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो सबई पंच भैया सुनो।

तो भैया अपन और सुनते हैं एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया, अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम, सुनो जी काकेर है, ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आओ थे ये कार्यक्रम को सुनो जी काकेर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत होवे तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करन चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को, तो नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे?
2: दीनदयाल बोल रहे हैं सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: सर सुनवा लीजिए, वो गीत है।

0: मैया बैठी रतन कर वाली
1: ऊंचे पारण पे बैठी मैया रतन कर वाली।
0: हाँ जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया हम आपको जरूर सुनवा है जोगी तो का हो रहा अपनो।
0: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
0: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, ऊपर वाले के पाए, और सब बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो? प्रियंका
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ,
0: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बताता है आप?
1: एक गीत कोई गाओ तो सुना दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा चलो
1: बोल
0: ठीक,
1: तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है। ठीक
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए हैं।
1: है भैया, जयराम जी की। दिलाल
0: जय श्री राम, जय श्री राम।
1: दुपट्टा उड़ गए मेरी हवा के।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का तो वहां देखो क्या एक उपाय।

के देख दिगंबर शिव शंकर का और भाल चंद्र मुस्काए हैं और टपका अमृत बिंदु धर्म गोशाला पर था।

नाद या भागा। भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? देखिए, वो बिखर गया परिवार।

अंतिम फल सुना कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराज गोरा।

0: बोले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो गुंडर खान नंबर 1094।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाई से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्ते।

0: प्रतापसिंह भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
0: शांति मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुनवा दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवा रहे
0: हैं। धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 को सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं आरजे हर्ष बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।

0: मैं आपके साथ जुड़ा है एक नई आवाज, एक नया दोस्त। तो कार्यक्रम के अंत में जरूर बताइएगा हमारे साथ जुड़कर आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यक्रम आप हमें फोन करिए 9219207749 पर।
1: श्रोताओ नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का मैं आरजे वर्षा, हर्ष हमारे बगल में बैठे हुए हैं क्योंकि हर्ष थोड़ा सा पहली बार आज आपके बीच में आए हुए हैं और हर्ष को लग रहा है कि कहीं कोई गलती हमसे ना हो जाए, इस वजह से वो थोड़ा सा हमसे चाहते हैं कि थोड़ी मदद करो, तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो श्रोताओं आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश शुरू हो चुका है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़िए। और आपको तो हमेशा की तरह पता ही है कि हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी को क्या करना होता है। हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें आपको फ़ोन करना होता है और फ़ोन करने के बाद आप सुन सकते हैं अपनी पसंदीदा गीत को। तो गीत को सुनने के लिए आपको फ़ोन करना होगा, है ना, और फ़ोन करने के लिए आपका नंबर होगा 9219207749। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, पहला कॉल जिसका आएगा उसको उसकी फरमाइश सुनाई जाएगी। तो आप अपने आरजे हर्ष के साथ जुड़े रहिएगा और वर्षा आपके साथ जरूर रहेंगी। तो आइए इसी खुशी में हम सुनते हैं एक बढ़िया से गीत को। गणेश जी का उत्सव चल रहा है और गणेश जी को लेकर इस गीत को हम सभी सुनते हैं। तब तक सुनिए आप इस गीत को और बने रहिए अपने रेडियो बुंदेलखंड पर अपने आरजे हर्ष और वर्षा के साथ में।

0: हेलो,
1: हमारे से जुड़े हैं। हमारे पहले कॉलर
0: हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पहले कॉलर योगेश कुमार जी। नमस्कार
2: भैया। नमस्कार।
0: नमस्कार भैया। नमस्कार, कहाँ से भैया?
2: योगेश जांगड़े बोले तरह छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में
2: जी। धन्यवाद।
0: ये बताइए भैया, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
2: प्रेम गीत से सुनवा भैया, एक प्यारा सा गजल है, होठों से छू कर तुम मेरा नाम अमर कर दो।
0: होठों से छू के तुम मेरा प्यार अमर कर दो।
2: हाँ जी जी जी जी
0: और भैया कैसे क्या हैं आप?
2: जी भैया
0: कैसे क्या हैं भैया आप?
2: बढ़िया बढ़िया है भैया, बढ़िया है।
0: बढ़िया हैं तो
2: हाँ
0: चलते हैं आज के गीत की ओर।
2: जी जी, जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ नमस्कार भैया।
1: जी, नमस्कार आदरणीय आरजे हर्ष भाई जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। नमस्कार
0: नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे
1: जी, मैं
0: हैं आप?
1: राजीव यादव, ग्राम उपरे का श्री राम पंडेरा सरी लराठ मुस्कुरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारी प्यारी वर्षा बहना जी को सादर प्रणाम नमस्कार पहुंचाइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तरफ से भी आपको नमस्कार।
1: जी
0: और कैसे हैं आप?
1: सर जी, हम तो बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, बगीचे में रेडियो बुंदेलखंड ओरछा का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं।
0: और कैसा, क्या मौसम कैसा है वहां पर?
1: मौसम तो धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस समय तिल की कटाई भी चल रही है।
0: अच्छा भैया,
1: जी
0: और बताइए।
1: और तो सर जी बढ़िया है, बस गीतों का आनंद ले रहे हैं।
0: तो चलते हैं गीत की तरफ।
1: जी सर जी, गीत तो वो सुना दिए जी, रे ढीला पैजामा रेशम का गुलू बंद, वो लोग कहाँ गए थे? सभी
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: दोस्तों के साथ सर जी।

0: एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हमारे साथ एक और साथी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
1: हेलो
0: हेलो
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार। कहाँ से हैं आप?
1: ग्राम सरसेठ थाना अरपालपुर से दीनदयाल कुशवाहा बोल रहे हैं।
0: नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: आपका नाम सर?
0: मेरा नाम आरजे हर्ष है और आज से आप एक नई आवाज सुनेंगे। आप बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको कार्यक्रम के बाद।
1: जी
0: भैया, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: आज एक नई फिल्म बनी है वो हनुमान अंश।
0: जी
1: उसका एक वही है तेरे भरोसे हनुमान मैंने नैया भाव सागर में डाल दी, ऐसा गीत है।
0: और भैया कैसे हैं आप?
1: आप बढ़िया हैं और हम बढ़िया है, चल रहा है बढ़िया काम।
0: हाँ हाँ ठीक है। क्या चल रहा है आप भैया बताइए जरा।
1: सर कहा है कि बस खेती की जो ऊर्जा है वो जितना बचा है वो कटाई पे आ गया है।
0: अच्छा,
1: और वो तो फसल जैसी है तो सब सही है लेकिन हाँ मूंग नष्ट होगी।
0: अच्छा अच्छा, और रेडियो कैसा लग रहा है आपको?
1: रेडियो बेहतरीन रेडियो लग रहा है और बढ़िया क्वालिटी आई साउंड की।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: और अभी बासा दीदी और मनीष भैया ने कुछ काम कर रहे होंगे।
0: हाँ आज वो थोड़ा सा बिजी है इसलिए आज आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मौसम कैसा है वहाँ पे?
1: बस मौसम तो बस ऐसा है, घाम निकला हुआ है, बस धूप छाई है।
0: अच्छा, तो चलते हैं गीत की तरफ, सुनिए।
1: बिल्कुल सही।

0: एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हमारे साथ एक और साथी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: भैया, राम राम।
0: राम राम भैया, राम राम भैया, परिचय बताइए अपना।
1: राजेश यादव, बस स्टैंड रेडी, जिला महुआ तबे से हो
0: रही है। राजेश भैया कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भैया, दुकान पे आना भी बैठे हैं दुकान में।
0: अच्छा, रेडियो कैसा लग रहा है आपको?
1: बढ़िया, रेडियो काफी दिन से जुड़े हैं
0: जी। और कैसे हैं, क्या हैं आप बताइए?
1: और सब बढ़िया है। महेश भाई साहब, माफी भैया और बैठा जी को नमस्ते बोल रहे ना।
0: नमस्ते नमस्ते, आपको भी नमस्ते उनकी तरफ से भैया।
1: बिल्कुल।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आप
1: आज? पंकज दास की आवाज सुनवा दो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी वाला सुनो, नाम फिल्म को।
0: चिट्ठी आई है। अच्छा, और दुकान पे कैसा क्या काम चल रहा है भैया अपना?
1: बढ़िया है, चला रहा है, मैंने स्टैंड पे है अपने दुकान।
0: अच्छा,
2: अरे मेरा।
0: और सब बढ़िया भैया?
1: हाँ बिल्कुल भैया।
0: किस चीज की दुकान रखे भैया अपन?
1: पशुहार, बेड पे, कपड़ा कहना और किराना की दुकान भी है। अच्छा। गाड़ी की सर्विस भी कर देते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ
0: तो चलें गीत की तरफ।
1: बिल्कुल भैया सुनाओ।
0: चलिए।
1: जयराम
0: जी, जयराम जी की भैया।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीत देवा श्री गणेशा अग्निपथ पिक्चर से। और जब तक श्रोताओं किसी का फोन कॉल नहीं आता है, तब तक हम आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे। कभी किसी पुराने गाने की धुन कानों में पड़ती है और अचानक याद आता है वो स्कूल का समय। आहा, दोस्तों के साथ बिताए वो दिन या घर की वो छोटी सी बात जिसे हम भूल चुके थे। आखिर ऐसा क्यों होता है, एक गाना, एक खुशबू या कोई जगह हमें सालों पुरानी यादें तक पहुंचा देती है। साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4। आज बात करेंगे कुछ ऐसी प्यारी यादों की जो समय के साथ पुरानी तो होती है लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होती। तो आप भी जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी याद है जिसे याद करते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आती है। तो दोस्तों, यादों का तो कोई टाइम टेबल होता ही नहीं, कभी भी आ जाती है। तो चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, शायद ये गीत से आपको आपकी किसी खास की याद आ जाए। तो सुनिए ये गीत।

तो बताइए साथियों, गाना सुनते सुनते क्या आपको भी कोई पुरानी याद आ गई? कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें बड़ी नहीं होती। एक दोस्त की हंसी, घर की चाय, बारिश में भीगना या परिवार के साथ बिताए एक साधारण सा दिन, यही छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी याद बन जाती है। तो आज बस इतना याद रखिए, आज का ये छोटा सा पल भी कल की एक खूबसूरत याद बन सकता है। इसलिए अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, खुलकर हंसिए और इन छोटे छोटे पलों को जी भर के जी लीजिए। मैं हूं आपका आरजे हर्ष, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM और आप सुन के जाइए ये गीत।

0: अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश?
1: नक्शा बनवाया था जी।
0: उसके तो बेचने के कागजात बनवाओ।
2: चिराग, एक बार अच्छे से सोच लो, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है।
3: भरोसा रखिए, घर मजबूती बनेगा।
4: एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा।
0: बहुत बढ़िया बेटा, तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों?
1: ताऊजी, पापा ने ही सिखाया कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है।
0: मान गए बेटा।
5: घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडिया नंबर वन सीमेंट।

0: साथियों आपका स्वागत है फिर से आपके विशेष कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, और हमारे साथ एक और कॉलर हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे बात कीजिए। हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार, परिचय दें अपना।
1: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिला सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी पुष्पेन जी, आपका कैसा क्या चल रहा है, कैसे हैं आप?
1: मेरा नाम है हरबिला सिंह तोमर।
0: अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से।
0: और घर में कैसे हैं सभी लोग?
1: घर में भी सब लोग अच्छी तरह से।
0: अच्छा, कहाँ पर घर पड़ता है भैया अपना?
1: मुरैना जिले में। मुरैना।
0: मुरैना के हैं आप तो? हाँ। रेडियो सुनते हैं आप?
1: बिल्कुल सुनते हैं।
0: कैसा लगता है आपको?
1: बहुत ही अच्छा, ज्ञानवर्धक, मनोरंजन भी भरपूर होता है।
0: चलिए बढ़िया है। और कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज है विश्व शांति दिवस
0: जी,
1: तो इस अवसर पर हम सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है हम सब उस्ताद हैं
0: जी।
1: प्यार बांटते चलो, ये प्यार बांटते चलो।
0: उस्ताद हैं फुल मूवी का?
1: नहीं, हम सब उस्ताद हैं।
0: हैं जी जी जी। तो गाना सुनेंगे आप?
1: जी गाना सुनेंगे।
0: चलें?
1: चले
0: चलिए।
1: ओके।

0: साथियों आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश, और गाने को यहीं विराम देते हुए हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो
1: हेलो, नमस्कार भैया।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: हम बोल रहे हैं दिनेश कुशवाहा, ग्राम लाड़पुरा, थाना ओझा, जिला नवाड़ी, मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं भैया? दिनेश भैया आप?
1: बस बढ़िया भैया, और इस समय सब्जी खेती है तो खेत में पानी दे रहे हैं।
0: अच्छा, खेत पर हैं आप?
1: जी
0: जी जी, बढ़िया है बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: बस एकदम बढ़िया है अभी तो।
0: और घर पे सभी लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं?
1: हाँ, अभी इस समय तो सभी लोग स्वस्थ हैं।
0: रेडियो सुनते हैं आप?
1: रेडियो के सबसे पुराने श्रोता साथी हैं हम।
0: जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आज आप गीत सुनवा दीजिए, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
0: नफरत की दुनिया को छोड़ के?
1: जी।
0: ये किसी को गाना आप सुनवा रहे हैं या खुद को ही सुनना है?
1: खुद को भी सुनना है। क्या है कि आज के समय में जो नफरत बढ़ रही है,
0: जी जी जी,
1: तो क्या है कि वैसे नफरत को से दूर ही रहना चाहिए हर इंसान को।
0: सही बात है, सही बात है।
1: कि जहाँ पर देखो वहीं पर कहीं घर परिवार में भी आपको नफरत देखने को मिल जाएगी, भाई भाई
0: बिल्कुल
1: की नफरत मिल जाएगी।
0: कलयुग है भैया ये।
1: हाँ वही चीज है, तो इसीलिए वो गाना थोड़ा ज्यादा पसंद रहता है मुझको।
0: चलिए चलिए, बढ़े फिर गीत की तरफ बढ़े।
1: जी जी बिल्कुल भैया,
0: चलिए गीत की ओर चलते हैं।

साथियों, ये थे हमारे आखिरी श्रोता जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। और साथियों, आप सुन रहे हैं आज का खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और इस कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कॉल या मैसेज कीजिएगा हमारे नंबर 9219 2077 49 पर। मैं हूं आपका आरजे हर्ष, लेता हूं आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नई कहानी और एक नई मुस्कान के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी यादों को हमेशा संभाल कर रखिए। और सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM। नमस्कार।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए हम तमाम प्रकार की रोजगार सूचनाएं हो या उनके करियर संबंधी जानकारी हो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोता साथियों तक पहुंचाते रहते हैं। आज चूंकि आज एक बहुत बड़ा विशेष दिन है और आज के हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, चूंकि हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को महत्व देता है, मरीज और फिटनेस के शौकीन आमतौर पर चोट, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली गति संबंधी विकारों से जुड़ी शारीरिक अक्षमताओं के लिए फिजियोथेरेपी सेवाओं की तलाश करते हैं, जो उनके लिए जरूरी या महत्वपूर्ण किसी भी गतिविधियों को करने या करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। स्वास्थ्य सेवा द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक प्रतिक्रियाओं में से चिकित्सीय व्यायाम एक प्रमुख तत्व के रूप में अपना स्थान रखता है।

है जो किसी व्यक्ति के कार को सुधारने या बहाल करने या शिथिलता को रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को केंद्र में होता है, जैसे कि संतुलन में सुधार, समन्वयक विकसित करना, प्रगतिशील लचीलापन, गतिशीलता में सुधार, मांसपेशियों का प्रदर्शन और तमाम प्रकार की, चूंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डॉक्टर ही बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें मिल गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी। आज आप किसी परिचय के मोहताज, नाम आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, हमारे मित्र हैं मनोज द्विवेदी जी। आप चिरंजीव हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को उन्होंने सही भी किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी रहते हैं। तो खास बातचीत में आप सुनिएगा कितनी महत्वपूर्ण रहता है ये फिजियोथेरेपी हमारे स्वास्थ्य के लिए। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं।

0: सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को। मुझे बड़ी खुशी है रेडियो बुंदेलखंड के मंच पर आने पर, और चूंकि ये चैनल मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता और जानकारी भी प्रदान करता है, तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि विश्व थेरेपी दिवस, चूंकि एक अलग लोगों को समझ में भी नहीं आता, खासतौर पर अगर ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इसको, तो इसकी शुरुआत इतिहास किस तरीके का रहा है, थोड़ा हमारे साथ बताइएगा।
1: देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप से शुरू हुई
0: जी।
1: और जैसे कि वर्ल्ड वार टू, और इस दौरान बहुत सारी कैजुअल्टी और बहुत सारी इंजरीज हुई, तो उस दौरान विकलांगता या जो इंजरीज के दौरान चलने उठने बैठने में असमर्थता आई, तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल या भूमिका अहम होती चली गई, वहां से ये विकसित होता चला गया। दूसरी बात कि भारत में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसका समावेश होता चला गया, और आज ये किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अहम भूमिका प्रदान कर रही है
0: जी। मनोज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जो फिजियोथेरेपी, और खासतौर पर आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आप इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके की मरीज यहाँ को देखने को मिला है आपको, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, और खासतौर पर ये इलाज किस तरीके से लोगों को एक रामबाण साबित होता दिखाई दे रहा है।
1: देखिए, मैं करीब करीब बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 साल से फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहा हूं। खासकर अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन अपने खेतों में काम करते समय या अपने गांव देहात में मजदूरी करते समय बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। जैसे खेतों में काम करते समय कमर की तकलीफ होना, या लंबे समय तक झुके रहने की वजह से गर्दन में समस्या होना, या बुवाई के समय खासकर जो है किसान भाई जो है हमारे, तो उनको घुटनों में दर्द होना, तो इस तरह की समस्याएं लेकर जब हमारे पास आते हैं, तो उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है।
0: सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे हमारे साथी, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल जो इलाज कराते हैं, क्या अंतर दिखाई देता है और क्या लोगों को समस्याएं आती हैं?
1: देखिए, आज के समय में बहुत सारे जो हमारे जागरूक भाई बहन हैं, तो उनका ये मानना रहता है कि अगर बिना दवाई या बिना जो है ऑपरेशन के क्या कोई ऐसी पद्धति या चिकित्सा विधि है जिसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी परेशानियां, जैसे कि मांसपेशियों का दर्द हो गया, या जोड़ों का दर्द हो गया, या नसों का दर्द हो गया, या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि लकवा हो जाना, या किसी अंग का काम नहीं करना, तो ऐसी समस्याओं में भी हम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या व्यायाम या कुछ मशीनों के योगदान या सिकाई से भी उसमें लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये पद्धति चिकित्सा क्षेत्र की ही है, तो कई बार बीमारियों में मेडिसिन के साथ साथ या

0: दवाइयों के साथ साथ भी फिजियोथेरेपी का योगदान रहता है
1: जी। खासतौर पर सर देखा जाता है, अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो देखा जाता है कि लोग अगर कुछ भी समस्या आती है, खासतौर पर अगर उनको पैरों में दर्द हुआ या फिर चेस्ट पेन हुआ, इस तरीके का कोई भी समस्या आती है, पेन किलर जो रहती है, दर्द निवारक गोलियां जो रहती है, खासतौर पर वो खा के उसका निदान कर लेते हैं, आपको क्या लगता है इससे लोगों के शरीर में जो नुकसान दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर आज जो विकट समस्याएं सुनने को और देखने को मिल रही है, कैंसर जैसी समस्याएं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां और रोज रोज दवाइयां खाने से हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान होता है, क्या कहना चाहेंगे
0: मनीष जी? ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल उठाया है और इसका मुझे लगता है कि हमारे हर भाई बहन को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, हर छोटी समस्या के लिए तुरंत पेन किलर ले लेना या दर्द निवारक दवाई का सेवन करना उचित नहीं है, जब तक कि वो बहुत ज्यादा विकट समस्या का रूप ना ले ले। मैं कहूंगा कि छोटे या छोटे मोटे शारीरिक कष्ट के लिए आपको दर्द निवारक दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो आपको डॉक्टर की उचित सलाह के बाद लेना चाहिए। रही बात छोटे दर्द वगैरह के लिए या छोटी मोटी दिनचर्या में जो आप कष्ट लेते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए छोटे मोटे व्यायाम, अपनी दिनचर्या में बदलाव और सही पोषण के माध्यम से आप उसको ठीक किया जा सकता है
1: जी। लेकिन यहाँ पर तो समस्या यही आती है कि लोगों को, चूंकि ऐसा माना जाता है, चूंकि मैं जाना स्पेशलिस्ट नहीं हूं उस चीज में, लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से और जो हम लोग नॉर्मल दवाइयां लेते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, फिजियोथेरेपी कराने में थोड़ा समय लगता है, जो कष्ट रहता है उनको, जो दर्द रहता है वो फिजियोथेरेपी से क्या धीरे धीरे जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, आपका क्या मानना है कि ये क्या चीज
0: मतलब? देखिए, मैं कहूंगा कि फिजियोथेरेपी भी लाभ देती है और दवाइयां या और जो पद्धति है वो भी लाभ देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि जैसे आर्थराइटिस है या गठिया हम कहते हैं, तो गठिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सूजन बढ़ रही है या किसी जोड़ के बीच में इन्फ्लामेशन या संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें योगदान रहेगा मेडिसिन का या दवाइयों का, जो उस संक्रमण को रोकने का काम करेगी। लेकिन अगर उस जोड़ में संक्रमण के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो रही है या स्नायु टाइट जकड़ रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का योगदान लिया सकता है और उस संक्रमण को कम करने के लिए दवाइयों का योगदान लिया सकता है। तो दोनों का ही सम्मिलित रूप मरीज को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है।
1: ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ देर बाद आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा, ऐसा लोग कहते हैं?
0: ये बिल्कुल सही कहना है मनीष जी आपका जी। है क्या कि फिजियोथेरेपी जब हम प्रारंभ करते हैं किसी समस्या को लेकर के, तो हमें उन मांसपेशियों को या उस जोड़ को पूरी तरह से ठीक करने में या सामान्य लाने में एक समय लगता है। हो सकता है कि यह समय कुछ दिनों से लेकर के महीनों तक में लग जाए, क्योंकि जितनी पुरानी समस्या होगी उसको ठीक होने में भी उतना समय लगेगा, जितनी गंभीर समस्या होगी उसके उपचार में भी उतना ज्यादा समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी थोड़ा सा टाइम ले सकती है पूरी तरह से ठीक होने में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर पर जब हम समुदाय के पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या देखने को और सुनने को मिल रही है कि खासतौर पर महिलाओं और पुरुषों के घुटनों में ये दर्द होता है, क्या मानना है किस कारण से होता है, क्या खान पीन से होता है, खान पान से होता है, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे होता है, क्या लगता है किस तरीके से आजकल ये जो समस्याएं देखने को मिलती और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली जा रही है, इस इलाज इसको फिजियोथेरेपी में किस तरीके से कर सकते हैं?
0: मनीष जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि हम युवा अवस्था में हैं
1: जी,
0: तो उस दौरान बहुत सारे जो है खेल कूद के दौरान या हमारी कुछ क्रियाकलाप के दौरान चोटें लग जाती हैं
1: जी।
0: उन चोटों की वजह से हो सकता है उस युवा अवस्था में, चूंकि हम अभी यंग हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, हमारे जोड़ मजबूत हैं, तो ये समस्याएं हो सकता है उस समय या उस अवस्था में कम महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो जो पुरानी चोटें हैं ये उभर के आने लगती हैं या हमारे जोड़ को बहुत जल्दी जो है संक्रमित करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अगर हमारा खान पियन अच्छा नहीं है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो बहुत हमारी फिजिकल एक्टिविटी या हमारे शारीरिक व्यायाम से संबंधित कर लीजिए वो कम है, तो हमारी मांसपेशियां कमजोर रहेंगी जो उम्र के साथ हमारे जोड़ों को प्रभावित करेंगे। दूसरा, अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गठिया हो गया, डायबिटीज हो गया या और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो भी इन जोड़ों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। अगला कारण ये हो गया कि अगर हमारी जलवायु में, खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि अब बहुत ज्यादा क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है या सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वह भी हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है जिनसे ये समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं।
1: इसका निदान किस तरीके, क्योंकि फिजियोथेरेपी आप काफी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल की हैं और खासतौर पर आपने एक फोकस तरीके से इसको चीज को बिल्कुल बारीकी से लिया है। ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं खासतौर पर इस फिजियोथेरेपी को लेकर?
0: देखिए, अगर आपको कुछ भी मांसपेशी संबंधित या जोड़ों से संबंधित समस्या होती है तो हमारा ये मानना रहता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है उस तकलीफ में, फिर हम काम में लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये पद्धति ना अपनाएं। अगर आपको समस्या लंबे समय से है या वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो मैं कहूंगा कि अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें और उनका मार्गदर्शन लेकर के उन चीजों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, जिससे आप समस्या से बच सकते हैं और समस्या से निदान भी पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात की है। और साथियों, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है और खास तौर पर ये आज हम जो बीमारियां सुनने की और देखने को मिल रही हैं, बहुत चिंताजनक बात है। हमें इसको समझना होगा, खासतौर पर ग्रामीण अंचल में इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है कि हमें कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के ओर रुख करना होगा और यही इलाज है, क्योंकि आजकल ये जो बीमारियां सुनने को मिल रही हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है। किस तरीके से हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इसका निदान पा सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले चरण में फिर से मिलेंगे, अगले भाग में जरूर मिलेंगे। कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं इस पर हम जरूर बात करेंगे। बने रहिए आपके दोस्त मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM।
0: नमस्कार।

बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और ये विशेष कार्यक्रम है आज, चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, बड़े धूमधाम से, चूंकि डॉक्टरी लाइन में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अपना एक महत्व भी रहता है। और खास बातचीत हमारे डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी से आपने सुनी है, कितनी महत्वपूर्ण रहती है। और मतलब ये कहेंगे कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बना हुआ है, जहां पर तमाम प्रकार के एक्सरसाइज के माध्यम से और बहुत सारी आधुनिक मशीनों द्वारा यहां पर तमाम प्रकार के लोगों को, मांसपेशियों में जिनको खिंचाव है या पर किसी को लकवा मार गया है, तो एक एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरीके से वो लोगों को राहत दे रहे हैं, बड़ा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रहा है चिरंजीव स्पोर्ट इंजरी सेंटर, जो कि हॉस्पिटल में है डॉक्टर मनोज द्विवेदी। तो खास बातचीत आपने सुनी है, और भी हम तमाम प्रकार की बातचीत हम लेकर आएंगे। तो कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, या फिर हमारे इस पते पर आप चिट्ठियां भी लिख सकते हैं, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। और आपके रेडियो साथी मरीज लेते हैं जाने की इजाजत, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है, उस पर भी हम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती बुवी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहती।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से दो गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70-80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं, तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौधे तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम एक या दो दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
0: जी, जी।
1: तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी जी जी, और रोपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रोपाई, चूंकि एक विधि रहती है रोपाई की, तो कौन सी ऐसी विधि है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है, वो एक लाइन मेथड में हम करें, चूंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
1: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई है ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए। अभी यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उसकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूम में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूम में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
1: जी सर बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर मिर्ची भट्टे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
0: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों?
1: बिल्कुल सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम पेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है, तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजैब या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
0: बहुत बढ़िया जानकारी, और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, चूंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
0: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाई भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
1: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं, जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
0: जी जी जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
1: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। अच्छा, तो अच्छा। चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम और छत्तीसगढ़ के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही इविरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम को जैसो नाम तैसो काम भी है। साथियों ई कार्यक्रम में अपन सुनत हैं एक विधाकों और विधाको आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आज ही कार्यक्रम में अपन एक बढ़िया सी विधाकों सुने और विधाको आनंद लें। बा विधा है विधा कहरवा। जब कहरवा लहरियां लेत है तो देखो कितना सुहाना लगत। आहा जा लगत के झूमन लगवे। बिल्कुल दोस्तों, तो आ दोस्तों यही क्रम में हम आपको एक बढ़िया सा कहरवा सुनाऊते हैं और कहरवा को आनंद आप सब जने लो और हम भी ले। तो आ दोस्तों सुनते हैं कहरवा को।

बिल्कुल दोस्तों, ईश्वर से प्रीत ना लगाई उम्र तूने वृथा गमाई। देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो कहरो अपन सबजन ने सुनो है और ई कहरवा को आनंद लो है। और दोस्तों ई कहरवा को गा रहे थे भैया चंदन सिंह आरवान जी। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो आ दोस्तों, एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ तो है, सुनते हैं एक और बढ़िया से कहरवा को।

उमरिया है बारी कैसे कटे हमारी। देखो दोस्तों, जो कितना प्यारो कहरवा अपन सब जन ने सुनो, ये कहरवा को आनंद लो है। और दोस्तों ये कहरवा को गा रहे थे भैया गजराज सिंह जी। अब दोस्तों गजराज सिंह जी के कहरवा के बाद फिर से अपन कार्यक्रम में सुनते हैं अगले साथियों के गायब है कहरवा को और उनके कहरवा को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही सुनते रहो जो कार्यक्रम अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों। हाँ, केवट को ठाड़े चिल्लाए रे रे जे अवध बिहारी। देखो दोस्तों, कितना प्यारा जो कहरवा अपन सब जनन ने सुनो है, इको आनंद लव है। और ये कहरवा को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो दोस्तों हमें तो ऐसे लग रहा हो कि हरी राम जी के स्वर में एक और कहरवा को काय न सुन लो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आप फिर से सुनते हैं एक और हरी राम जी के स्वर में कहरवा को।